0: तो डर नाम की चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। जो कर रहे हैं, अगर बोला किसी ने आपको मारना है तो मैं आती हूँ नीचे, मैं मरने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मार दीजिए, लेकिन आप भी अंदर जाने वाले हैं।
1: मैं हूँ रजनी पंडित, मुंबई से, भारत की पहली महिला जासूस।

ज़्यादातर से हमारे पास जैसे कि स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे जो आजकल बहुत आदतों के शिकार बने हैं, सेकंडली शादी तय होती है तो शादी के लिए कैसा लड़का है कैसी लड़की है जो बताया वो कितना सही है। आज तक ऐसे 85,000 के ऊपर मैंने केस की चीज़ें, और कैसे कि लोगों को चार जगह पे बात फैलना नहीं चाहिए। पुलिस के पास जाते हैं तो कोई प्रेस वाले होते हैं, कुछ होते हैं, हमारे यहाँ सीक्रेसी रहती है। एक तो बचपन में एक स्वभाव था कि सच्चाई सामने लाने का, तो मैं मुंह फटे करके ही सब लोग मुझे जानते थे।

किसी ने कॉन्टैक्ट किया बहुत टाइम पहले. आई थिंक आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 16-17. तो हाई जीरो नॉलेज अबाउट इट. तो बस शौकिया जो है वो पहला मैंने ऐसे शूट किया था. माई फादर वॉज अगेंस्ट इट बिकॉज अगेन लोग क्या कहेंगे. तो बस उनके यही कंसर्न थी, सेफ्टी कंसर्न के माहौल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. नहीं, आई थिंक यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है. हाय, दिस इज़ एरिका रॉबिन फ्रॉम कराची, पाकिस्तान, एंड आई एम योर फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान. मिस यूनिवर्स का आइडिया दिमाग में कभी नहीं आया बिकॉज आई न्यू दैट पाकिस्तान लिस्ट पे नहीं है, लेकिन आई थिंक इट वॉज रिटन इन द डेस्टिनी. और वो बस घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आया, आज भी अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट, इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम.

जब मैंने स्टार्ट किया करियर तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ। लोगों ने बोला कोई और प्रोफेशन में मिला क्या कोई, और तभी मोबाइल नहीं थे, स्पाई कैमरा नहीं थे। उसके मुंह पे कंट्रोल, लोग होते हैं औरत के मुंह में कुछ बात नहीं चुप रह सकती है, लेकिन मैंने आज इतने सालों से लोगों का सीक्रेट मेरे पेट में रखा है। तो हो सकता है, और औरत बहुत सक्सेसफुली काम कर सकती है। पहले पता, बेटा कुछ गलत करता है तो माँ को पता चलता है, हस्बैंड का कुछ गलती है वो बार बार कुछ छुपा रहा है तो पत्नी को पता चलता है। मैंने एक मर्डर केस की थी जहाँ मैं सर्वेंट बनकर रुकी थी, अंधे का रोल किया है। तो रास्ते में उसको कलर चेंज करना चाहिए, विग बदलना चाहिए। अभी तक 30 साल में किसी ने पकड़ा नहीं है कि इनका काम चालू है और इनको पकड़ लो।

उसके बाद जब ये न्यूज़ आउट हुई थी तो वो कुछ टाइम के लिए बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था ट्विटर पे, हर जगह ट्रेंडिंग न्यूज़ आ गई थी. एंड द टैगलाइन वाज शेमफुल फॉर मी. वी रिजेक्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे.

तो बस उस चीज़ को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया था नहीं थी क्योंकि लोगों को लगा ठीक है शी इज़ क्रिश्चियन सो शी इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द इस्लामिक कल्चर. How would she represent us? How would she respect the culture? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे swimwear round भी होता है तो ज़्यादा जो है वो backlash वहाँ से आ रहा था तो and I myself मैं भी इतने ज़्यादा comfortable नहीं थी कि मैं जो है स्टेज पे जो है वो बिकिनी पहनूँ. So they said yes, but it's not necessary that you have to wear bikini. If you're not comfortable, you can wear bikini. And that's the time that I said yes, I want to do it.

लास्ट ईयर जो थी वो 200 एप्लीकेशन थी और इस साल क्योंकि नाउ एवरीवन नो दैट इट्स रियल इट्स ऑथेंटिक एंड आई वाज रियली हैप्पी कि ठीक है नाउ इट्स एक्सेप्टेड एंड क्योंकि मैं दिल से बहुत चाहती थी कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं आई एम ग्लैड कि इस बार मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी लड़कियों ने भी अप्लाई किया एंड आई थिंक कि बीइंग द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान हैज़ रियली मेड मी फील द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ ट्रू पाकिस्तानी आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम द फर्स्ट बट नॉट द लास्ट

0: विमेन डिटेक्टिव है ना, वो सोच समझ के दिमाग चला के काम करती है। आज मेरे क्लाइंट मेरे घर जैसे है, 2 बजे आता है तो करते रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी नहीं,
1: खाली भगवान की पूजा होती है, उसके लिए भी उसके पास कुछ मांगती नहीं है, बस पूजा करके छोड़ देती है।

0: देखो शुरू में कुछ करती है लेडी तो टिका टिप्पणियां होती तो है.
1: टू बिकम द फर्स्ट मिस यूनिवर्स वाज नेवर देयर.
2: Dan Diana dapat tunjuk yang pakai tudung ni bukanlah penghalang untuk capai impian.
1: If I think about it, it still feels like a dream.
0: Mai pailu, Bharat ki pahli mahila jasus.

तो डर नाम की चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। जो कर रहे हैं, अगर बोला किसी ने आपको मारना है तो मैं आती हूँ नीचे, मैं मरने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मार दीजिए, लेकिन आप भी अंदर जाने वाले हैं। मैं हूँ रजनी पंडित, मुंबई से, भारत की पहली महिला जासूस। ज़्यादातर से हमारे पास जैसे कि स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे जो आजकल बहुत आदतों के शिकार बने हैं। सेकंडली शादी तय होती है तो शादी के लिए कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, जो बताया वो कितना सही है। आज तक ऐसे 85,000 के ऊपर मैंने केस की चीज़ें, और कैसे कि लोगों को चार जगह पे बात फैलना नहीं चाहिए। पुलिस के पास जाते हैं तो कोई प्रेस वाले होते हैं, कुछ होते हैं, हमारे यहाँ सीक्रेसी रहती है। एक तो बचपन में एक स्वभाव था कि सच्चाई सामने लाने का, तो मैं मुंह फटे करके ही सब लोग मुझे जानते थे।

किसी ने कॉन्टैक्ट किया बहुत टाइम पहले. आई थिंक आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 16-17. तो हाई जीरो नॉलेज अबाउट इट. तो बस शौकिया जो है वो पहला मैंने ऐसे शूट किया था. माई फादर वॉज अगेंस्ट इट बिकॉज अगेन लोग क्या कहेंगे. तो बस उनके यही कंसर्न थी, सेफ्टी कंसर्न कि माहौल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. नहीं, आई थिंक यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है. हाय, दिस इज़ एरिका रॉबिन फ्रॉम कराची, पाकिस्तान, एंड आई एम योर फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान. मिस यूनिवर्स का आइडिया दिमाग में कभी नहीं आया बिकॉज आई न्यू दैट पाकिस्तान लिस्ट पे नहीं है. लेकिन आई थिंक इट वॉज रिटन इन द डेस्टिनी. और वो बस घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आया. आज भी अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट, इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम.

जब मैंने स्टार्ट किया करियर तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ। लोगों ने बोला कोई और प्रोफेशन में मिला क्या कोई, और तभी मोबाइल नहीं थे, स्पाई कैमरा नहीं थे।

उसके मुंह पे कंट्रोल होते हैं, औरत के मुंह में कुछ बात नहीं चुप रह सकती है, लेकिन मैंने आज इतने सारे से लोगों का सीक्रेट मेरे पेट में रखा है। तो हो सकता है, और औरत बहुत सक्सेसफुली काम कर सकती है। पहले पता, बेटा कुछ गलत करता है तो माँ को पता चलता है, हस्बैंड का कुछ गलती है वो बार बार कुछ छुपा रहा है तो पत्नी को पता चलता है। मैंने एक मर्डर केस की थी जहाँ मैं सर्वेंट बनकर रुकी थी, अंधे का रोल किया है। तो रास्ते में उसको कलर चेंज करना चाहिए, विग बदलना चाहिए। अभी तक 30 साल में किसी ने पकड़ा नहीं है कि इनका काम चालू है और इनको पकड़ लो।

सो उसके बाद जब ये न्यूज़ आउट हुई थी तो वो कुछ टाइम के लिए बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था ट्विटर पे, हर जगह ट्रेंडिंग न्यूज़ आ गई थी. एंड द टैगलाइन वाज शेमफुल फॉर मी. वी रिजेक्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे.

तो बस उस चीज़ को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया था नहीं थी क्योंकि लोगों को लगा ठीक है शी इज़ क्रिश्चियन सो शी इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द इस्लामिक कल्चर. How would she represent us? How would she respect the culture? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे swimwear round भी होता है तो ज़्यादा जो है वो backlash वहाँ से आ रहा था तो and I myself मैं भी इतने ज़्यादा comfortable नहीं थी कि मैं जो है स्टेज पे जो है वो बिकिनी पहनूँ. So they said yes, but it's not necessary that you have to wear bikini. If you're not comfortable, you can wear bikini. And that's the time that I said yes, I want to do it.

लास्ट ईयर जो थी वो 200 एप्लीकेशन थी और इस साल क्योंकि नाउ एवरीवन नोज दैट इट्स रियल इट्स ऑथेंटिक एंड आई वाज रियली हैप्पी कि ठीक है नाउ इट्स एक्सेप्टेड एंड क्योंकि मैं दिल से बहुत चाहती थी कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं

फीमेल डिटेक्टिव है ना, वो सोच समझ के दिमाग चला के काम करती है। आज मेरे क्लाइंट मेरे घर जैसे है, 2 बजे आता है तो करते ही, रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी नहीं, खाली भगवान की पूजा होती है, उसके लिए भी उसके पास कुछ मांगती नहीं है, बस पूजा करने छोड़ देती है।

टू डर नाम की चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। जो कर रहे हैं अगर बोला किसी ने आपको मारना है तो मैं आती हूँ नीचे, मैं मरने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मार लीजिए, लेकिन आप भी अंदर जाने वाले हैं। मैं हूँ रजनी पंडित, मुंबई से, भारत की पहली महिला जासूस। ज़्यादातर से हमारे पास जैसे कि स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे जो आजकल बहुत आदतों के शिकार बने हैं। सेकंडली शादी तय होती है तो शादी के लिए कैसा लड़का है कैसी लड़की है जो बताया वो कितना सही है। आज तक ऐसी 85,000 के ऊपर मैंने केस की चीज़ें। और कैसे कि लोगों को चार जगह पे बात फैलना नहीं चाहिए। पुलिस के पास जाते हैं तो कोई प्रेस वाले होते हैं, कुछ होते हैं, हमारे यहाँ सीक्रेसी रहती है। एक तो बचपन में एक स्वभाव था कि सच्चाई सामने लाने का, तो मैं मुंह फट करके ही सब लोग मुझे जानते थे।

किसी ने कॉन्टैक्ट किया बहुत टाइम पहले. आई थिंक आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 16, 17. तो हाई जीरो नॉलेज अबाउट इट, तो बस शौकिया जो है वो पहला मैंने ऐसी शूट किया था. माई फादर वॉज अगेंस्ट इट बिकॉज अगेन लोग क्या कहेंगे. तो बस उनके यही कंसर्न थी, सेफ्टी कंसर्न कि माहौल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. नहीं, आई थिंक यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है. Hi, this is Erica Robin from Karachi, Pakistan, and I'm your first ever Miss Universe Pakistan. Miss Universe ka idea dimag mein kabhi nahi aaya because I knew that Pakistan list pe nahi hai. Lekin I think it was written in the destiny. Aur woh bus ghoom phir ke pata nahi kahan se aaya. Aaj bhi agar if I think about it, it still feels like a dream. Okay.

जब मैंने स्टार्ट किया करियर तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ। लोगों ने बोला कोई और प्रोफेशन में मिला क्या कोई, और तभी मोबाइल नहीं थे, स्पाई कैमरा नहीं थे। उसके मुंह पे कंट्रोल, लोग होते हैं औरत के मुंह में कुछ बात नहीं चुप रह सकती है, लेकिन मैंने आज इतने सालों से लोगों का सीक्रेट मेरे पेट में रखा है। तो हो सकता है, और औरत बहुत सक्सेसफुली काम कर सकती है। पहले पता, बेटा कुछ गलत करता है तो माँ को पता चलता है, हस्बैंड का कुछ गलती है वो बार बार कुछ छुपा रहा है तो पत्नी को पता चलता है। मैंने एक मर्डर केस की थी जहाँ मैं सर्वेंट बनकर रुकी थी, अंधे का रोल किया है। तो रास्ते में उसको कलर चेंज करना चाहिए, विग बदलना चाहिए। अभी तक 30 साल में किसी ने पकड़ा नहीं है कि इनका काम चालू है और इनको पकड़ लो।

सो उसके बाद जब ये न्यूज़ आउट हुई थी तो वो कुछ टाइम के लिए बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था ट्विटर पे, हर जगह ट्रेंडिंग न्यूज़ आ गई थी. And the tagline was shameful for me. We reject Miss Universe Pakistan. Hum to accept hi nahi karenge.

तो बस उस चीज़ को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया था नहीं थी क्योंकि लोगों को लगा ठीक है शी इज़ क्रिश्चियन सो शी इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द इस्लामिक कल्चर. How would she represent us? How would she respect the culture? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे swimwear round भी होता है तो ज़्यादा जो है वो backlash वहाँ से आ रहा था तो and I myself मैं भी इतने ज़्यादा comfortable नहीं थी कि मैं जो है stage पे जो है वो bikini पहनूँ. So they said yes, but it's not necessary that you have to wear bikini. If you're not comfortable, you can wear bikini. And that's the time that I said yes, I want to do it.

लास्ट ईयर जो थी वो 200 एप्लीकेशन थी और इस साल क्योंकि नाउ एवरीवन नोज दैट इट्स रियल इट्स ऑथेंटिक एंड आई वाज रियली हैप्पी कि ठीक है नाउ इट्स एक्सेप्टेड एंड क्योंकि मैं दिल से बहुत चाहती थी कि सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं आई एम ग्लैड कि इस बार मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी लड़कियों ने भी अप्लाई की एंड आई थिंक कि बींग द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान हैज़ रियली मेड मी फील द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अ ट्रू पाकिस्तानी आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम द फर्स्ट बट नॉट द लास्ट

फीमेल डिटेक्टिव है ना, वो सोच समझ के दिमाग चला के काम करती है। आज मेरे क्लाइंट मेरे घर जैसे 2 बजे आता है तो करते ही, रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी नहीं, खाली भगवान की पूजा होती है, उसके लिए भी उसके पास कुछ मांगती नहीं है, बस पूजा करके छोड़ देती है।

तो डर नाम की चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। जो कर रहे हैं, अगर बोला किसी ने आपको मारना है तो मैं आती हूँ नीचे, मैं मरने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मार लीजिए, लेकिन आप भी अंदर जाने वाले हैं। मैं हूँ रजनी पंडित, मुंबई से, भारत की पहली महिला जासूस। ज़्यादातर से हमारे पास जैसे कि स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे जो आजकल बहुत आदतों के शिकार बने हैं। सेकंडली शादी तय होती है तो शादी के लिए कैसा लड़का है, कैसी लड़की है, जो बताया वो कितना सही है। आज तक 85,000 के ऊपर मैंने केस की चीज़ें। और कैसे कि लोगों को चार जगह पे बात फैलना नहीं चाहिए। पुलिस के पास जाते हैं तो कोई प्रेस वाले होते हैं, कुछ होते हैं, हमारे यहाँ सीक्रेसी रहती है। एक तो बचपन में एक स्वभाव था कि सच्चाई सामने लाने का, तो मैं मुंह फट करके ही सब लोग मुझे जानते थे।

किसी ने कॉन्टैक्ट किया बहुत टाइम पहले. आई थिंक आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 16-17. तो हाई जीरो नॉलेज अबाउट इट, तो बस शौकिया जो है वो पहला मैंने ऐसे शूट किया था. माई फादर वॉज अगेंस्ट इट बिकॉज अगेन लोग क्या कहेंगे. तो बस उनके यही कंसर्न थी, सेफ्टी कंसर्न के माहौल अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. नहीं, आई थिंक यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की एक्सेप्टेंस थोड़ी कम है. हाय, दिस इज़ एरिका रॉबिन फ्रॉम कराची पाकिस्तान एंड आई एम योर फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान. मिस यूनिवर्स का आइडिया दिमाग में कभी नहीं आया बिकॉज आई न्यू दैट पाकिस्तान लिस्ट पे नहीं है, लेकिन आई थिंक इट वॉज रिटन इन द डेस्टिनी. और वो बस घूम फिर के पता नहीं कहाँ से आया, आज भी अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट, इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम.

जब मैंने स्टार्ट किया करियर तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव हूँ। लोगों ने बोला कोई और प्रोफेशन में मिला क्या कोई, और तभी मोबाइल नहीं थे, स्पाई कैमरा नहीं थे। उसके मुंह पे कंट्रोल होते हैं, औरत के मुंह में कुछ बात नहीं चुप रह सकती है, लेकिन मैंने आज इतने सालों से लोगों का सीक्रेट मेरे पेट में रखा है। तो हो सकता है, और औरत बहुत सक्सेसफुली काम कर सकती है। पहले पता, बेटा कुछ गलत करता है तो माँ को पता चलता है, हस्बैंड का कुछ गलती है वो बार बार कुछ छुपा रहा है तो पत्नी को पता चलता है। मैंने एक मर्डर केस की थी जहाँ मैं सर्वेंट बनकर रुकी थी, अंधे का रोल किया है। तो रास्ते में उसको कलर चेंज करना चाहिए, विग बदलना चाहिए। अभी तक 30 साल में किसी ने पकड़ा नहीं है कि इनका काम चालू है और इनको पकड़ लो।

सो उसके बाद जब ये न्यूज़ आउट हुई थी तो वो कुछ टाइम के लिए बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था ट्विटर पे, हर जगह ट्रेंडिंग न्यूज़ आ गई थी. एंड द टैगलाइन वाज शेमफुल फॉर मी. वी रिजेक्ट मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे.

तो बस उस चीज़ को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया था नहीं थी क्योंकि लोगों को लगा ठीक है शी इज़ क्रिश्चियन सो शी इज़ नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट द इस्लामिक कल्चर. How would she represent us? How would she respect the culture? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे swimwear round भी होता है तो ज़्यादा जो है वो backlash वहाँ से आ रहा था तो and I myself मैं भी इतने ज़्यादा comfortable नहीं थी कि मैं जो है स्टेज पे जो है वो बिकिनी पहनूँ. So they said yes, but it's not necessary that you have to wear bikini. If you're not comfortable, you can wear bikini. And that's the time that I said yes, I want to do it.

लास्ट ईयर जो थी वो 200 एप्लीकेशन थी और इस साल क्योंकि नाउ एवरीवन नोज दैट इट्स रियल इट्स ऑथेंटिक एंड आई वाज रियली हैप्पी कि ठीक है नाउ इट्स एक्सेप्टेड एंड क्योंकि मैं दिल से बहुत चाहती थी कि इससे माइनॉरिटीज नहीं आई एम ग्लैड कि इस बार मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी लड़कियों ने भी अप्लाई किया एंड आई थिंक कि बींग द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स पाकिस्तान हैज़ रियली मेड मी फील द इम्पोर्टेंस ऑफ बींग अ ट्रू पाकिस्तानी आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम द फर्स्ट बट नॉट द लास्ट

0: फीमेल डिटेक्टिव है ना वो सोच समझ के दिमाग चला के काम करती है। आज मेरे क्लाइंट मेरे घर जैसे है, 2 बजे आता है तो करते ही, रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी नहीं,
1: खाली भगवान की पूजा होती है, उसके लिए भी उसके पास कुछ मांगती नहीं है, बस पूजा करके छोड़ देती है।